0: अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरूमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यु आर।
2: एक फूल झरेर के भो, एक फूल झरेर के भो।
3: नेपाली सुपर हिट्स
4: रात

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यही माँ किप्स एफएम अलेना पांच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यही मा अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी मा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदाय मा पासा किप्स 98.3 एफएम

0: स्टेशन गिव्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।
1: नया प्यार है नया इंतजार,
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट गिव्स एफएम 98.3।

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: टिप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
2: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
1: एवरी फ्राइडे 12 पीएम।

0: हिट्स 98.3 एफएममा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार दिन की 10 बजे
3: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
5: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
5: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
5: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
7: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
8: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
9: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
8: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
9: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
10: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
11: 01-42-35-888 98-12-35-888
12: You can dance
13: You can sing All you gotta do is
14: Just tune in
13: KIPS FM 98.3 MHz Your companion The radio of new generation
15: Stay connected with your favorite station KIPS FM 98.3 MHz
6: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
15: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search KIPS FM 98.3 MHz and hit that follow button today.

0: your home.
1: KIPS 98.3 FM. तपाईं सँगको सहयात्रा.
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम.
3: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए.
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट KIPS FM 98.3.

0: Kids 98.3 FM, your companion.
1: कार्यक्रम कलियुग टाइम, कलियुग टाइम.
2: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: weekly countdown show of top 10 English numbers with exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits and many more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
1: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m. and Thursday 2 p.m.
0: on KIPS 98.3 FM.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
6: यू कैन डांस
7: यू कैन सिंग ऑल यू गॉट टू डू इज
8: जस्ट ट्यून इन
9: KIPS FM 98.3 MHz योर कंपेनियन द रेडियो ऑफ न्यू जेनरेशन
10: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको

0: यो हो केप्स 98.3 FM तपाईसँगको सहयात्रा
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3

0: the radio station that keeps you cool, alive and entertained. Kips FM 98.3 MHz, your companion.
1: Kips 98.3 FM ma gazal sansar
2: mujhse milne shama jala kar aaj mahal mein
1: गजल संसार
2: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
3: हर एक शनिवार दिन की 10 बजे

0: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। साथमा सुन्नुहोस् नेपाली र हिन्दी सुपरहिट गीतहरू मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे।
1: Best romantic Hindi song.
2: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं?
1: Every Sunday 9 p.m. and Tuesday 6 p.m.
3: This is Kips 98.3 FM, your companion.
4: Hollywood Golden Hits.

0: Life-Changing Quotes. सुंदरता शक्ति हो, मुस्कान हथियार हो, यो भनाई हो चार्ल्स रेडी को।
1: केही नौलो
2: रोचक
1: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 एफएम मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
2: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नु होला मात्र किप्स 98.3 एफएम मा।
3: नया नया सजौ है संसार, सुख दुख बाटो है मेरे।
4: किप्स अनप्लग्ड
5: फुल है ना
4: नेपाली आर्टिस्ट सिंगर्सहरूका अनप्लग्ड गीतहरू सुन्न नछुट्याउनु होला हरेक आइतबार मध्याह्न 12 बजे र शनिबार दिउँसो 4 बजे।

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले बरी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

तारीख, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
6: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Enjoy 60s, 70s and 80s Bollywood numbers.
3: Chandan sa badan, chanchal chitvan, dheere se tera ye muskaan.
2: Bollywood golden hits.
4: Kaya wali pyar ka dushman hai.
2: Every Monday and Friday, 10 p.m. Sunday and Tuesday, 4 p.m. Hey!

0: है, रस्ते पे खड्डे है, बैलों के अड्डे है, सड़ गए मसले, तू असले कंगन किधर है बेलाला?
1: Just move your feet. Enjoy the dance beat.

सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। साथमा सुन्नुहोस् नेपाली र हिन्दी सुपरहिट गीतहरू मात्र किप्स एफएम 98.3।

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे किप्स FM 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
3: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम ब्युटी हेल्थ एन्ड लाइफस्टाइल साथमा सुन्नुहोस् नेपाली र हिन्दी सुपरहिट गीतहरू मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे
4: Does your computer UPS has no more backup time as before? Are you looking for battery replacement for your computer UPS? If yes, Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics has a solution for your problem. Protect your computer and hard disk drive from frequent power cuts with reliable, sealed, maintenance-free, long-life, SMF batteries. Also, we do exchange with your old batteries. Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics. Kulishwar, Kathmandu. Contact number 530-2678. 530-2678.
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
8: What's the secret to success?
9: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
9: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
10: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
11: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 530-2678 530-2678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
7: Stay connected with your favorite station KIPS FM 98.3 MHz
9: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love
7: And don't stop there follow us on Instagram and TikTok too Search KIPS FM 98.3 MHz and hit that follow button today

0: Yoho Kips FM 98.3 MHz.
1: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग, बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग.
1: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स एवरी संडे 9 PM, ट्यूसडे 6 PM.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
2: स्टेशन गिव्स FM 98.3 MHz.
1: नया प्यार है, नया इंतजार.
3: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. साथमा सुन्नुहोस् नेपाली र हिन्दी सुपरहिट गीतहरू मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
1: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
0: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
2: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
3: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678 5302678. लोकेशन को लागी गुगल गर्नुहोस्. बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स.
4: यू कैन डांस,
5: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
6: जस्ट ट्यून इन
5: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़, योर कंपेनियन, द रेडियो ऑफ न्यू जनरेशन.
7: What's the secret to success?
1: Simple. Say yes to radio advertising.
7: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
1: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
7: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
8: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत. जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको.
9: फुलको डाली डालीमा तिम्रो रूपको लाली.
10: नेपाली चलचित्रका सदाबहार गीतहरू.
11: मेरो निन्द्राको तिर्खा रात रजिनाको किन छोरे.
10: Wednesday and Saturday, 2 p.m., Thursday, 10 p.m., only on Keeps FM 98.3.